बेशक हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, हर किसी के लिए दुआ किया करें, क्या पता किसकी किस्मत आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा हो। या अल्लाह हमें इतना सब्र दे कि हम हर हाल में मुतमईन रहें, हमें इतना मजबूत बना दे कोई हमें कमज़ोर ना कर सके, हमें अपने इतना करीब कर दे कि किसी और की हमें ज़रूरत ना पड़े, हमें दुनिया की इतनी समझ अता कर दे कि हम हर फैसले पर राज़ी हो जाए, हमें इतना कुछ नवाज दे कि हम किसी के मोहताज ना रहे तेरे सिवा, हमें अपनी याद में इतना मसरूफ़ कर दे कि हमें किसी और की याद ना सताए, हमें इतना कुर्ब अता फरमा कि हमें दुनिया की चाह ना रहे। या अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान को इत्तफाक अता फरमा, फ़िलिस्तीनियों की गैब से मदद बन नुसरत फरमा, यहूदियों को निस्ता नाबूद कर दे और आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा और तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। मैसेज आया है हमारे असलम साहब और रुखशाना की तरफ से, हर हफ्ते ये मुझे मैसेज भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, स्पेशल ग्रीटिंग।

जी बेशक जो बार बार जा रहे हैं वो जाते रहे और जो जाना चाह रहे जो तड़प रहे हैं या अल्लाह कुल मोमिनीन को उस जगह की सआदत कब नसीब फरमा उनके कदम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचा दे ये हमारी दुआ है इंशाल्लाह जो जाना चाहते हैं आप उम्मीद रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें अगला कलाम है शगुफ्ता इमरान की आवाज़ में मेरे मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे है

बेशक जब आंखें उस सुनहरी जालियों पे पड़ते हैं तो दिल रो पड़ता है और खुशी से हम सलाम भेजते हैं हमारे आका पे और दुरूद भेजते हैं। तो अगला कलाम है नेहा नाज की आवाज़ में, अगल मुझको मिल जाए राहे मदीना।

जी हाँ, ये थी नेहा नाज, अगर मिल जाए मुझको राहे मदीना। अलग अंदाज में था माशाल्लाह। हम हैं 20 सितंबर 2026 में और 8 रबीउल आखिर 9वीं रात शुरू हो चुकी है। कहते हैं महीना है गौसुल आज़म का, तो अगला कलाम है गौसुल आज़म की शान में।

किसी ने सच ही कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर आपके माँ बाप है उन्हें वक्त दें, उन्हें सराहें, और जिनके माँ बाप नहीं अल्लाह ताला मरहूमों को सबसे ऊंचा दर्जा दे जन्नत का, उनकी मगफिरत करें। अगला कलाम है कादरी आस्ताना, सलामत रहें।

जी कादरी आस्ताना और काफी लोग पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम, मोहम्मद रजा साहब, हमारी जमीला आपा और मैं प्यारी बहन रशीदा धन से जो कि बगदाद जा चुकी हैं और इंशाल्लाह रशीदा आपा फिर से बगदाद जरूर जाएंगे। मैसेज है बर्थडे मैसेज हमारी प्यारी कमर इस्माइल के लिए 19 तारीख के लिए, अयान अब्बास 21 तारीख के लिए, शहनाज राउत 21 सितंबर के लिए, प्यारा हमारा हाफिज आकिब दलवी 23 सितंबर और फातिमा भी 23 सितंबर। एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स टू रहमान दादा एंड शाहिदा फॉर द 19th ऑफ सितंबर एंड दिस कम्स फ्रॉम दलवी अब्बास इस्माइल एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। अगला कलाम